से कहो राम राम राम श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सका सब ही राम नाम।